0: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
1: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

0: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
1: अरे ढोलक बज रहा भाई, ढोलक
0: ढोला क्यों बज रहा है?
1: अरे शादी है यार, शादी
0: शादी हम भी चले गए।
1: चलो